0: आसमा।
1: नमस्ते, म गायक तथा संगीतकार रक्षक राय। यहाँहरू यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ सङ्खुवा सभाको खाटबारीबाट सञ्चालित पहिलो अनलाइन रेडियो नागरिक चासो। सूचना, सञ्चार र मनोरञ्जनका लागि सधैँ सुन्ने गरौँ। हस्, धन्यवाद।
2: हर चेहरे में तेरा अक्स नजर आता है, क्या कहें तेरे बारे में। तू हर रूप में खूबसूरत नजर आता है।
3: प्रदीप सोनू।